0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من

यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त करो।

पीछे वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद, हैदर

आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता था किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मोराली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर वर्गा सकीन कोई देखी आए जग सारा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे हो नारे हैदरी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: कोर कबाड़ जो पढ़ी मदद जरिए इंतजार पखंडन चिथण जो फैसलो सिंधास मुहिदे बाबत भारती मौकफ रद्द पानी के जायज हक लाए समूरा घुर्बल कदम खण जो ऐलान फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर की सदारत हेठ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कश्मीर पाकिस्तान की शेर करार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलन अगवान सरजमीन के इस्तेमाल से गणती जो इजहार अगवान तालिबान रजीम का पाकिस्तान खिलाफ पंज सरजमीन जो इस्तेमाल रोकने जो मुतालबो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल अगवान इलाकों में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई जारी रखने जो फैसलो फोरम चाहिए दहशतगर्दी के सबब मुतासर इलाकों में गवर्नेंस जो बेहतरीन निजाम जोड़ो वे जो सियासी पुटभराई से दहशतगर्दी ए डोहन वे गठजोड़ के टोड़े फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोर कमांडर के जंग के तब्दील किरदार मूजिब मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से अमल तेज करने की हिदायत कन्दे पाकिस्तान की सलामती कौमी मफाद की हर कीमत से तहफुज किया वो
1: भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के आवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक कोस्ट तक के जो आवाम हम इसका दिफा करेंगे हम आपको जवाब देंगे हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के आवाम तैयार है मरसू मरसू सिंधु ना देसुं इसका मतलब है मरूंगा मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा
0: बुद्धि बुद्धि छद सिंतास मुआदे दिठा न कंदासी सिंधु दरिया जो दिफा कंदासी जंग विड़नी पई तो विड़ंदासी तुझी हर साजिश नाकाम बनाईंदासी ऐं कामयाब थींदासी गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी हलबरदारी तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाक फौज जंग में भारत खे बदनाक शिकस्त ॾिनी भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे भारत हाणे इसराइल मॉडल अख़्तियार कयो आहे मोदी अफ़ग़ानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो जेबी में अवाम सां कयल वाइदा पाड़ींदासीं समूरनि जमायतुनि सां गॾिजी कम कंदासीं हमास वीहनि सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ बाडी टोड़ण जो ऐलान हमास जी तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडी खे टोड़े छॾियो आहे सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु आहे गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जो शख़्स हवाले कयो वेंदो ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो आख़िरी रस्मूं मड़ जलूस जी सूरत में मुसल्ला मस्जिद खां कुम पहुचायो वियो लखे सोगवारनि पारां अमरीका ऐं इसराइल खां क़तल जो पलांद वठण जो मुतालबो ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त शहीद रॉबर्ट सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहादु आहे असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं ईरान सां मामला बहितरीन अंदाज़ में अॻिते वधी रहिया आहिनि अमरीकी फ़ौज अक्सरी मैदान में ईरान खे शिकस्त ॾिनी तहरान करे भेट में हथियार न ठाहे सघंदो अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज विंजुरा में बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारी हाणे बि दुनिया जी बहितरीन फ़ौज आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि नौजवान जी बेरोज़गार बाबति इजलास वज़ीर आज़म जे प्रोटेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इमिग्रेशन वारे निज़ाम खे डिजिटलाइज़ करण जी हिदायत शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी अपराधी कुवत बासलाहियत आहे नौजवान जी रोज़गार हुनरी सिख्या ऐं सिख्या लाइ ज़रूरी क़दम खया वञनि सदर आसिफ ज़रदारी सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुची पियो सदर सादे ज़ाप्राफ सदर आसिफ़ ज़रदारी एयरपोर्ट ते आजियां कई गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो पियो सदर किर्गिस सदर ऐं ॿियनि अख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं कंदो बतरफ़नि लाॻापनि सां मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं डिवल्यूशन बाबति सेनेट जी फंक्शनल कमेटी जो इजलास 16 सालनि खां सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ़ चइनी सूबनि में पौणा 3 लख नौकरियुनि ते वफ़ाक पारां कोटा ते अमल न करण जी तसदीक सिंध जो 1 लख नौकरियूं बि शामिल कमेटी तरफ़ां 1 खां 16 ग्रेड जी नौकरियुनि ते फौरी अमल करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकम

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हां बुड़ी 331 25 25 786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कलमा पढ़ो ते निक देरा देहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा कु जुदाई मुस्लिम विचों का।

अर्दा मजबूर आशिक के मुझा यार दोस्त रोकिन था त तू मैंने महबूब से मिलन न वन मुझा दुश्मन तोखे होते बहरहाल महबूब जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए छो ऐ छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जना बीमार थो यो किसो ताके आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जना बीमार थो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुजो महबूब मुजो पुले कांधी थे ओ मुजा

ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਮੁੰਜੇ ਮੱਥਾ ਮੌਤ ਆਇਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛਾ ਚਵੰਦਸ ਉਹ ਤੇ ਛਾ

0: धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकची चयो त मुआहिदे जी शिक नंबर 13 वाज़े आहे त धमकियुनि जी सूरत में ॻाल्हियूं न थी सघंदियूं। हुन खां अॻु अमरीकी सदर ट्रम्प चयो हो त अमरीका ईरान सां मुआहिदो कंदो या ईरान खे ख़तम करे छॾींदो।
1: हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई। गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदे बाडी टोड़ण जो ऐलान हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडीअ खे टोड़े छडि॒यो आहे। सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करण न आहे। गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोगी शख़्स हवाले कयो वेंदो।

0: सिंध हाईकोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी कीमत तय करण जे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार ॾींदे रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ मुक़रर करण जो इख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे, सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते अदम एतमाद आइनी दरख़्वास्त जो जवाब नथो बणिजे।
1: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोतियल कैदी जो लाश रखी धरणो। फोतियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जो वारसन लाश नसरपुर टंडोलिया रोड ते रखी धरणो हयो। वारसन चयो त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनी तां कूड़े केस में फासाए मारियो आहे। जेसिताईं ग्रुप जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा तेसीं ताईं असां लाश दफ़न न कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जीए एफएम 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5576।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's time to commercial break.
1: सचल की सर मस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते
3: खबरी लाड़काने शहर जो मशहूर ए मेडिकल जे दुनिया जो वड नालो डॉक्टर असदुल्ला महर एमबीबीएस एफसीपीएस गोल्ड मेडल लिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हिते हडन ए जोड़न जो सूर कुन रग जो सूर वाई ए चेल जो सूर वडी उम्र जे मानु नंढन बारन में हडन ए जोड़न जा मसला फ्रैक्चर फिरेल पेरन ए जंगुन के ठीक करण हडन ए जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे डॉक्टर असदुल्ला महर हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन टाइम आचर खां जुम्मो रोजानो सुबह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं एड्रेस बैतुल शफा बोन ट्रामा क्लिनिक लखनऊ देरो चौक लाड़काणो याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन एड्रेस सखर टाउनशिप आरएफ बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर टाइम मंझन जो 2 बजे का शाम जो 6 बजे ताई वधिक राबते जे लाए मोबाइल नंबर 03-668-64025 ऐं फोन नंबर 07440 57199
0: दुनिया में असान जे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहयो आहे
4: इन जा मुख्य कारण मौरूसी मोटापो वर्जिश न करण गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वगैरह आहिनि शुगर जे मर्ज जूं खास खास सलामतूं ई आहिनि बार बार पेशाब जो अचणु अचानक वज़न घटि थी वञण बुख घणी लॻण मथे ते दॿा हुजण हथनि ऐं पेरनि जो सड़ण सॼे जिस्म में बाहि वांगुर महसूस थियण कमजोरी महसूस थियण पेरनि में फट थियण टंगुनि में गिढियूं पवण ऐं कंध जो गोरो थियण वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई एमबीबीएस एमफिल कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी
0: वेहण जो हंध गुलाम अकबर शुगर क्लिनिक सामो मिसल स्कूल लाड़काणो
4: टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं याद रखंदा जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी
0: मोबाइल नंबर 03-4-3251-217 अदी ॾसु त ॾे मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए
5: भेण डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसी हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे
4: ख़ुशख़बरी औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर सुमेरा बिरोही एमबीबीएस एफसीपीएस कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद वुमेन हॉस्पिटल लाड़काणो माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी सीजर ऑपरेशन

0: औरतुनि में अंडेदानी बच्चेदानी ऐं रसोलनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन बियोलॉजी जो ख़ासि इलाज ऐं टेस्टूं हमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज यादि रखंदा ग़रीब मरीज़नि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर वीआईपी रोड लाड़काणो टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333071553
1: नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए FM 88 नेटवर्क।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, और आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: गिलोरी से खालिद लाशारी बात कर रहा हूँ.
0: खालिद लाशारी, कैसे, ठीक ठाक?
1: अलहमदुल्ला.
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: गिलोरी.
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: नहीं, पहले भी कॉल की थी बाजी आपको प्रोग्राम में, लेकिन आपने गाना नहीं चलाया था.
0: गाना नहीं चलाया था, चले आज सुना दें अच्छा सा गाना.
1: जी आप सुना दें. हम तो तेरी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम.
0: ओके, ठीक है, और कुछ कहना है
1: बाजी? अभी सोलंकी या कुर्बान खास के लिए को दे दी केयर करना है.
0: जी ओके, अल्लाह हाफिज. कॉल ड्रॉप हो गई. खैर, 03000113488. मैं सोच रही हूँ कि पुराना वाला प्ले करें, नया वाला प्ले करें, कौन सा वाला प्ले करें. थोड़ा सा पुराना अगर हम प्ले करते हैं, सो पुराना वाला मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है.

0: चेक करेंगे कि कॉलर कहाँ से हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से
1: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन
0: नूर हुसैन तो नहीं फ्रॉम बदीन कैसे ठीक ठाक
1: अल्लाह का शुक्र से आप ठीक हो
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ मुझे बताइए यार प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: मैसेज भी चेंज होती
0: हूँ
1: आपका नेट पे शोर नहीं आ रहा
0: नेट पे नहीं आ रहा कैसे सुन रहे हैं फिर आप
1: रेडियो पे
0: रेडियो से सुन रहे हैं चले फिर तो बहुत जबरदस्त बात है गाना कौन सा सुना रहे हैं हमें लगे तो प्यार जी काबिल चले मैं प्ले करती हूँ किसी को डेडिकेट करना है
1: खालिद दीन साहब हर हाल विशाल
0: ओके जी मैं अभी प्ले करती हूँ जी थैंक यू अल्लाह हाफिज और गाना प्ले करने जा रहे हैं हम एंड ये रहा गाना

शहीद आयतुल्लाह खमेनी जे मर्डर जो आखिरी रस्मूं शुरू थी वयूं। आयतुल्लाह जवादी आमली शहीद आयतुल्लाह खमेनी जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुम में आखिरी रस्मूं मुकमल थियण बाद शहीद आयतुल्लाह खमेनी जी मड़ खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुम में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम में इंतिहाई सख़्त।

0: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी।
1: सिंध हाई कोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतूं तय करण वारे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ मुक़ररु करण जो अख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे। सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते अदम एतमाद आइनी दरख़्वास्त जो जवाब नथो बणिजे।

कानपुर ॿाहिरि वेझो ॿ मासूम निंगरियूं वाट कोर्स में ॿुॾी फोत घोट इस्माइल पिताफ़ीअ में ॾह वरियनि जी अजवा ऐं ॾह वरियनि जी सबाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोतियूं।

0: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फौत थियल कैदीन जे वारसन जो लाश रखी धरणो। फौत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जे वारसन टंडोलिया रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनी तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: रूस जे यूक्रेन जे गादी वारे शहर कीव ते हमलो 26 ॼणा मारिजी विया। पर ॾेई मीडिया जो चवण आहे त रूसी हमले में केतिरा ई शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि। ऐं स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैरियर जो आख़िरी वर्ल्ड कप खे यादगार बणाइण में नाकाम। फीफा वर्ल्ड कप जे मैच में स्पेन पोर्चुगाल खे शिकस्त ॾेई क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। स्पेनिशन टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगाल खे ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में गोल तां शिकस्त ॾिनी। इवेंट जे ॿिए मैच में बेल्जियम जी टीम मेज़बान मुल्क अमरीका जी टीम खे इवेंट खां ॿाहिरि कढी छॾियो। बेल्जियम जी टीम अमरीका खे हिक जे मुक़ाबले में 4 गोलनि तां शिकस्त ॾिनी।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network, Sindh ki aawaz.
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
5: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252578
5: जी हां बुड़ी 361 25 25 786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं जो कि आप कर भी सकते हैं. एंड हम चलेंगे आगे एंड साथ साथ हम आज का जो सेगमेंट है बोलो तो माने वो कंटिन्यू करेंगे.

टू शर्ट जो कि आपको

कह के दिखाना है। और सेगमेंट की फर्स्ट कॉल लेंगे और ये फर्स्ट कॉल हो चुकी है जी हैंग, सो इसको हम हैंग होने नहीं देंगे। आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं 8881 पे और कमेंट्स आप लोगों के बहुत सारे मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, सबको इंक्लूड करेंगे ठीक है। और इसके अलावा आज का टंग ट्विस्टर, काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया, ठीक है जी, ये कहना है।

0: Okay, जी, so callers को हम receive करेंगे जी 03000113488 काशान ने कबाब के साथ क्विक ह्यूमर खाया ठीक है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग और ये कहेंगे और देखते हैं कि कौन आता है जी कॉलर फर्स्ट इस सेगमेंट का हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से
1: जी मैं वकार जतोई लाल से
0: वकार जतोई भाई कैसे ठीक ठाक मैं बहुत अच्छी मुझे बताइएगा टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे
1: सर मैंने नहीं सुना आप सुनाए
0: ओके आपने कहना है कि काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया
1: काशान ने कचूमर के साथ कचूमर खाया
0: काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया
1: काचान ने कचान के साथ कचूमर खाया काचान ने कचान के साथ
0: कचान नहीं आप सुना हो पाएगा और कुछ
1: और ये कल बेस्ट वाला प्रोग्राम आपने नहीं किया
0: अब वो असल में खत्म हो चुका है मैंने लास्ट किया था ना सैटरडे को उसमें मैंने अनाउंस किया था कि वो लास्ट प्रोग्राम है
1: क्या आप दोबारा किएगा
0: हाँ अभी पॉसिबल है कि कुछ दिन बाद या कुछ मंथ्स बाद दोबारा शुरू हो जाए लेकिन फिलहाल जो है वो प्रोग्राम क्लोज हो चुका है
1: मेरे प्यार में एकड़ा शो यो आकार दी में दाई शो करें दी आकार में शो बताए और दाई शो बंद कर चुका मार चुके
0: दो अढ़ाई ये दो घंटे शो करती तो हूँ मैं
1: शो बिल्कुल सीन दिया रहे शो आकार में मना दे साथ निकली
0: हो ओके चले मे बी ठीक है जी थैंक यू सो मच मे बी कुछ टाइम बाद वो शुरू हो जाए दोबारा से 03000113488 के ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग ओके जी नेक्स्ट कॉलर हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से
2: मैं सर दर्द बात कर रही हूँ
0: सर दर्द कैसी ओ चहकती चहकती आई हो आज
2: बिल्कुल ठीक
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ मुझे बताएं टंग ट्विस्टर से ना बोलेंगी
2: काफी आपके साथ कस्टमर का है यही है
0: एग्जैक्टली यही है सो गाना मैं नेक्स्ट प्ले करने जा रही हूँ एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल उसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे

0: की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको फिर मिलकर गिरने पर मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे।
1: Dinner time.

0: के हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315257786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: एलोवेरा
1: व्हाइट एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM

0: 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
0: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

तो भाई बिल्कुल खूबसूरत बनिए और साथ ही साथ अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपनी स्किन को जो है ना वो चमकता दमकता बनाइए और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं भाई हाँ ये सब कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, तो मैं हूँ ना बताती हूँ, मैं हूँ ना हमेशा आपको मिलूंगी यहाँ पर और आपको बताऊंगी कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों को कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल भी रख रहे हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर हम जिक्र करें यहाँ पर तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम है,

whitish, lovely cream hai. Aur Dr. Pimple anti acne tube. और वाइटेश का सोप है, वाइटेश फेस वॉश है. इतने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितने अच्छे प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों ने इंतखाब कर लिया है. तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है तफसीलन थोड़ा आप लोगों को बताना चाहिए कि ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं तो इनका इस्तेमाल क्या होगा, कैसे होगा. तो अगर आप वाइट एश की लवली क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वाइट एज लवली क्रीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वाइट एज लवली क्रीम जो है ना ऐसा समझ लें कि ये भाई आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी. ये इंडियन ड्रामे और वीडियोस देखते कर मेरी इतनी हिंदी जो है ना वो साफ हो गई है, मैं क्या बताऊं. और उसके अलावा जो है ना

अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत रहे गर्मियों का, मौसम है आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना मेकअप ही नहीं लगा पाते, या फिर आप अपने चेहरे पर ग्लो भी लाना चाहते हैं, ये जो है ना आपकी आंखों के हल्के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आपको सन प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो बिल्कुल इन सारे सूरत हाल में आपको बस क्या करना है, आपने व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है। व्हाइट एश लवली क्रीम का जो फार्मूला है ना ये इतना जबरदस्त है, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम जो है रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स के साथ तैयार की गई है, जिसके अंदर 30 विटामिन्स के कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, जिसमें विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है एंड विटामिन B3 है। उसके अलावा बात यहीं पर खत्म नहीं होती मेरी जान, और इसके साथ साथ जो है ना इसके अंदर यानी कि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड किया गया है। क्या बात है, ओ तेरी जबरदस्त हो गया। कभी आपने सुना कि कोई फेयरनेस क्रीम आपको सनस्क्रीन भी उसके अंदर हो और सन प्रोटेक्शन भी देती हो, तो नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल ये फायदे मिलेंगे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये एक फेयरनेस क्रीम है, जिसे आपके घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हो, खवातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। फेयरनेस फार्मूला है और जनाब आप इसका जेको हिन जो रिजल्ट आना हो तव्हांखे ॾाढो भलो मिलंदो, ऐं तव्हां अगरि चाहियो था त बाबा तव्हां वटि इहो हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, मां थोरो एक्सप्लेन कयां तव्हां सां।

त तव्हां जे घर में जेके कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि बाबा असां त क्रीमियूं कोन त क्रीम जो मक़सदु इहो न आहे हूंदो त तव्हां सिर्फ़ नाइट क्रीम खे पंहिंजे ज़हन में रखो त नाइट क्रीमियूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे ईअं हूंदियूं आहिनि असां राति जो नाइट क्रीम न हणी सुम्हंदा आहियूं त तव्हांखे जेको आहे न जॾहिं फेयरनेस क्रीम मिलंदी आहे फेयरनेस क्रीम तव्हांजी ज़िंदगी जो हिसो हूंदी आहे मूंखे त ईअं लॻंदो आहे अगरि फेयरनेस क्रीम तव्हां वटि न आहे तव्हां फेयरनेस क्रीम नथा इस्तेमालु कयो त बाबा तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में अधूरा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो फर्स्ट लो इजलास के ब्रीफिंग ने बताया था सिंध के अंदर माली साल 15,90,000 टन कणक जो खोट के मुंह डी रही है। जखीरांदोजी सबब ओपन मार्केट में कणक की कीमत इमदादी अघ का भी वधी पई है। मुराद अली शाह चो तो कणक की खरीदारी जखीरे और फरामी वाले समूरे निजाम के जदीद टेक्नोलॉजी से गंढियो वे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ समेडा बाबत इजलास। नंढे कारोबार के हथी डेण लाए कर्जन के आसान बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नंढन कारोबारन के हथी डेण लाए कर्जन के आसान बनायो वञे। हारिन ऐं आबादगारन के भी कारोबार तरफ आणण लाए मदद फराहम कई वञे।
1: पंहिंजे सही जी इज़त कयो। धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी पार्टी वज़ीर अब्बास चिराग़ची चयो आहे त ईरानी आवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़े आहे। धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईराननि जे एतिहाद जा मंज़र मां ॾिठा। घटि में घटि पंहिंजे सही जी इज़त ई कयो।
2: खां कुंभ पहुचायल शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ जो आख़िरी रस्मूं शुरू। आयतुल्ला खामनाई जवादी आमले शहीद आयतुल्ला खामनाई जे जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुंभ में आख़िरी रस्मूं मुकमिल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुंभ में सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम सख़्त।
1: किर्गिस्तान जे दौरे ते मौजूद सदर आसिफ ज़रदारी जे मान में तकरीब। सादिर जी फारूफ सदारती महल पहुचण ते सदर आसिफ ज़रदारी जे आजियां कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी खे गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी जी करगम हम मनसब सां मुलाक़ात। ब तरफ़न लाॻापन ऐं वापारी सहकार खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़।
2: हुकूमत वधीक 28 इदारनि जी निजकारीअ ते कम करे रही आहे। टैक्स निज़ाम मां इंसानी राब्तनि खे ख़तम करे रहिया आहियूं। मुल्क में सभिनी खे टैक्स ॾियणो पवंदो। कराची में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त गुज़िरियल माली साल जी पुॼाणी मज़बूत मुआशी इस्तक़ाम सां थी आहे। वॾी सनअतनि जे तरक़ी सबबि मुआशी तरक़ीअ जी शरह 3.7% रही। बजट में मुलाज़मनि तां बि टैक्स जो भार घटायो आहे। ईरान सां वापारी लाॻापन में मुस्बत अघ भराई थींदी।
1: बलोचिस्तान जे शहर ज़ियारत में हथियारबंदनि जे पुलिस चौकी ते हमले बाद सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ज़ख़्मी। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे नव अहलकार शहीद। बलोचिस्तान हुकूमत जे तर्जुमान शाहिद रिंद चयो आहे त भारत जी सरपरस्ती में कम कंदड़ दहशतगर्द पुलिस ते हमिलो कयो। फोर्स जवाबी कार्रवाई जे नतीजे में 15 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे बिन SHO समेत 9 अहलकारनि शहादत माणी।
2: डिंगरियूं वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत। ॻोठ इस्माइल पिताफ़ीअ में 10 वरियनि जी अजवा ऐं 8 वरियनि जी सभाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोत थियूं।
1: तलार में मीरबा केनाल में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख रोड ते धरणो। आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो हयो। घोटकी में बि कादरपुर माइनर वट 1 ऐं 2 जे आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ सिराफ़ीज आरो धरणो। पाणी चोरी रोके पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
2: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोत थियल कैदी जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। फोत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ तालपुर जे वारसनि टंडो अलियार रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसनि जो चवण आहे त असांजे हमराह खे फारूक तालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनीअ तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: सिंध में मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि लाइ टेस्ट पास करण उमेदवारनि जा एहतजाजी मुज़ाहिरा। लाड़काणे में अरोली चाइल्डहुड टीचर जी नौकरी लाइ टेस्ट ॾींदड़ औरत उमेदवारनि जो एहतजाज। दादू में मास्तरी लाइ NTS टेस्ट पास उमेदवारनि मुज़ाहिरो कयो। पनियाकल में जेल पुलिस कांस्टेबल जी भर्ती लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ नौजवान जो एहतजाज। उमेदवारनि जो चवण आहे त लगातार एहतजाज बावजूद कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो। महांगाई ऐं बेरोज़गारी सां परेशान आहियूं। आर्डर ॾेई बेचैनी ख़तम कई वञे।
2: नारो विझो महिमान थी आयल नौजवान खे खट सां ॿधी तशदुद। वीडियो वायरल। गोठ अताउला बिहार में नौजवान कामरान जिस्कानी ते तशद्दुद कयो वियो। ज़रीन जो चवण आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे जेको नसीबुल्ला जिस्कानी वटायल हो। पुलिस मौजूद मुतासिर नौजवान तोड़े संदस वारिस मां केर बे थाने ते न आयो। वीडियो डिठी आहे इल्ज़ाम हेठ आयलन के हथ करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाखिल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।
1: शाम की राजधानी दमिश्क में फ्रांसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी दौरान धमाका, 18 जना जख्मी। परडी मीडिया मौजूद मैक्रोन के होटल पारा धमाका थियान। धमाका मैक्रोन के होटल में वन बाद थे जिन नतीजे में 18 जना जख्मी थे। सदर मैक्रोन महफूज रहो।

0: जे सूबे होबी जे शहर ज़ायो में वाचूरन तबाही मचाए छॾी। तेज हवाउनि सबब सामान उॾी वियो। छहनि ॼणनि जे फोत थियण जी तस्दीक। केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ बुड़ी 331 5576
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध काबीना सूबे में कणक जे अतरादू कोट ऐं अटे जे अघ में वाध जो नोटिस वरितो। कणक ज़खीरो कंदड़नि ऐं अटो महांगो विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो। वरी वज़ीर मुअद्द अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। वफ़ाक़ पारां जोड़ियल क़ौमी कणक पॉलिसी ते ख़दशा ज़ाहिर। पॉलिसी जो जाइज़ो वठण लाइ टिनि सेक्रेटरियुनि ते पधल कमेटी क़ाइम। सामूंडी पटी जी निगरानी लाइ सिंध फिशरीज़ सिक्योरिटी सर्विसेज नाले नओं इदारो ठाहिण जो फ़ैसिलो। सूबे में नयनि शुगर मिल्स जे क़याम जी बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी। मुअद्द अली शाह चयो आहे त खुराक खातो पॉलिसी ठाहिण, निगरानी करण ऐं ग़िज़ाई तहफ़ुज़ ते ध्यान ॾेई अटे जूं क़ीमतूं मुस्तक़िम करण लाइ कार्रवाई कई वञे।

तव्हां कई पई वञे। कणक रुगो खाइण जेतिरे ज़खीरो करण जी इजाज़त आहे, बाक़ी कंहिंखे बि कणक ज़खीरो करण जी इजाज़त न हूंदी। ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श महर चयो त माहौलियाती तब्दीली सबब कणक जी अपत घटी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प नेटो सरप्राइज इजलास में शिरकत लाइ तुर्किया पहुची वियो। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान अंकरा पहुचण ते अमरीकी सदर ट्रम्प जो आदर भाॻियो।

पंहिंजी सही जी इज़त कयो। धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त ईरानी अवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़े आहे त धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो हो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईरानियुनि जे इतिहाद जा मंज़र अवां ॾिठा। घटि में घटि पंहिंजी सही जी इज़त कयो। तेहरान खां कुम पहुचायल शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मर जो आख़िरी रस्मूं शुरू। आयतुल्ला जवाबदी आमली शहीद आयतुल्ला खामनाई जे जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुम में आख़िरी रस्मूं मुकमल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मर खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो कुम में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सां। किर्गिस्तान जे दौरे ते मौजूद सदर आसिफ अली ज़रदारी जे मान में तकरीब। सादिर जियापा रऊफ सदारती बहल पहुचण ते सदर आसिफ अली ज़रदारी जी आजियां कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी खे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी किर्गिस हम मनसब सां मुलाक़ात बि तरफ़ लाॻापन ऐं वापारी सहकार खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?

0: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: विटामिन ई बीड्स।

0: FM88 Network, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे FM नेटवर्क।
1: आवी क्लास का पहरी नेटो ते तनकीद ईरान खिलाफ जंग में शामिल लथण ते मयारू भी दिनियो। तुर्क पहुंचण ते सदर रजब तैयब एर्दोगान पारां सदर ट्रंप जी आचिया तोपन जी सलामी भी दिनी वई। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। मीडिया से गलाई ते डोनाल्ड ट्रंप चयो त नेटो ईरान खिलाफ जंग में असांजी मदद न कई। जंग खत्म थियण खां पोइ बरतानवी वज़ीर आज़म मदद जी आछ कई। नेटो इजलास में अचण जो मूड न हो। तुर्किया जी मेज़बानी सबबि हिते आयो आहियां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुझो सुठो दोस्त आहे। बेन मुल्कन जी भेट में तुर्किया अमरीका सां वधीक वफादार रहियो। अमरीका सदर यूरोप खे रूस खां बचायो आहे। यूरोपी मुल्कन खे बचाइण लाइ ईरान जी एटमी सलाहियत खे ख़तम कयो। तुर्किया मुंहिंजे करे इसराइल जंग ख़िलाफ़ जंग में शामिल न थियो। तुर्किया चाहे हा त इसराइल जंग में शामिल थी पई सघियो। तुर्किया मज़बूत ऐं वॾी फ़ौज रखंदड़ मुल्क आहे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान चयो आहे त अमरीका खां F-35 बेड़ाक जहाज़ वरिता वेंदा।

0: घट में घटि पंहिंजी सही जी इज़त कयो। तेरान खां कुम पहुचायल शहीद आयतुल्ला खामनई जे मड़ जो आख़िरी रस्मूं शुरू। आयतुल्ला जवादी आमली शहीद आयतुल्ला खामनई जी जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुम में आख़िरी रस्मूं मुकमल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनई जे मड़ खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुम में तमाम सख़्त
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरिया एसिम की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई।

सदा शहर सिंध जे निज़ारन ते लिखबो, मेहरान जे मौजुन किनारन ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारन ते लिखबो, हारन मजदूरन मोचारन ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारन ते लिखबो, मुहन जे दड़े जे आसारन ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारन ते लिखबो, ओ दीदार देस वारन

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

जीजू बड़ा है हूँ भाषा मतो यार बने हूँ भाषा नचा नचा दिलदार काते दिसा मैं पंज मयार ऐसी वैसी ना तू बात कर मुझे सेना को ही मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठ डर डर.

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: वाली हिंद सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोबद कड न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरा आयो जान में।

सदा शहर सिंध जे निज़ारनि ते लिखबो, मेहरान जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
0: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125257 86।
1: जी हा 231-25-25-786
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की
1: आवाज़। मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।